ताले तग धुमी तग ताले तग जमी तग झाला आंबो तग धुगे तग ताले गे नेतो तग नाक तग झुमी तग नाक नाक झुमी तग नाक नाक झुमी तग नाक नाक जम धरिता जग धरिता जन जाने को धरी दाबू तारे गेटे ताले धरिता जग धरिता जन जाने को धरी दाबू तारे गेटे जम धरिता।

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: गोरी गुजरी

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

और जहां आप उजाला रेडियो सुन रहे हैं, लगदी लाहौर दी गाना का नाम है। दैट वाज द सिम्फनी, निमंत मेरे दान गुरु रंधावा, गब्रखता द फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D।

दिल जानिए मैनु जी ले दे दिस इज एम फन जुबिन नौटियाओ एंड तुलसी कुमार एंड द फिल्म खानदानी ए शेफ खाना एंड इन डेज फिल्म स्पेल ऑन द अंदर सोनाक्षी सिन्हा बादशाह एंड वरुण शर्मा

दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी सुपर रेडियो हैज टू बी उजाला रेडियो. आई होप यू एंजॉयड गाना. सो से खनीत ऑन स्पन एंड रिलैक्स.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

रब ने भेजा है तुम्हें दुनिया में मेरे लिए वो दिल दिल ही क्या है, वो दिल दिल ही क्या है जो मिलने की दुआ ना करे, हम तुझको भूल कर जिंदा रहे कभी खुदा ना करे। एक शुभ और मुबारक सुबह आप सभी को पेश है, लवली लवली मॉर्निंग आगाज करते हैं अरमा मालिक की आवाज़ में।

अरमा माने एक प्यार ना करना, लोगों ने बहुत हमसे कहा, लोगों ने बहुत हमसे कहा प्यार ना करना, बेताबी दिल का कभी इकरार ना करना, वो सामने जो आए उन्हें कुछ ना बताना, वो सामने जो आए उन्हें कुछ ना बताना, दिल में छुपे जज्बात का इजहार ना करना, लोगों ने बहुत हमसे कहा प्यार न करना, बेताब ये दिल का कभी इकरार ना करना। बांसुरी अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुनोगे तुलसी कुमार एंड अली सेठी।

आना है मेरा पूरा बस तुझसे हो ए अरिजीत सिंह, लवली सॉन्ग तुलसी कुमार अली सी थी। एक बेहद ही खूबसूरत गीत है अल्फाज पर अगर आप ध्यान होंगे कि अगर एक है तो आधा है, अगर दो हो तो पूरा हो जाए जिंदगी के लिए। खुद से बेभर के उस पे एतबार ना करना, खुद से भर के उस पे एतबार ना करना, टूट के बिखर जाओगे इस राह उल्फत में। कभी वफा के लिए उनसे तकरार ना करना, कभी वफा के लिए उनसे तकरार ना करना, तुम जान से जाओगी यू कर के भरोसा, तुम जान से जाओगी यू कर के भरोसा, महबूब के वादे पर, महबूब के वादे पर एतबार ना करना। लोगों ने बहुत हमसे कहा कि प्यार ना करना, बेताबी ये दिल का कभी इकरार ना करना। ओ माही

इरशाद कामिल के कलम से निकले हुए खूबसूरत अल्फाज आपने सुना फ्रॉम द फिल्म डोंकी। आपको याद होगा इस फिल्म में काम किए शाहरुख खान। दर्द मेरे दिल का कोई न जाने, दर्द मेरे दिल का कोई न जाने, ना कोई मेरी वफा पहचाने, जिसका सहारा बना था कभी मैं, जिसका सहारा बना था कभी मैं, वो ही लगी दिल दुखाने, दर्द मेरे दिल का कोई न जाने।

और अगर कोई बेपना चाहे, जी रही हूँ मैं आपके दम से, जी रही हूँ मैं आपके दम से, चलती है सांस तेरे नाम से, मैं और क्या मांगू तेरे नाम से। Een hele goede morgen, Artie. En die zit te luisteren in België. Midiana natuurlijk al naar school gebracht.

आदत है बस तेरी आदत है, अरिजीत सिंह एंड मीत ब्रॉस के साथ पर। कुछ इस तरह से मैंने अपना जीवन सजा दिया, कुछ इस तरह से मैंने अपना जीवन सजा दिया, तेरे इनकार को अपनी नई तकदीर बना लिया, तेरे इनकार को अपनी नई तकदीर बना लिया, कर दी सारी दुनिया तेरी इस हसीन मुस्कुराहटों के नाम, और कुर्बान है तेरे चेहरे पर मेरे सुबह और शाम। समझ नहीं पाते तेरे आँखों के इशारे को, समझ नहीं पाते तेरे आँखों के इशारे को, और नहीं जुल्फों के काले अंधेरे को, चाहत है सिर्फ चंद प्यारे लम्हों की, चाहत है सिर्फ चंद प्यारे लम्हों की, जिन्हें अपने मेरे हाथों से, जिन्हें आपने मेरे हाथों से मिटा दिया, कुछ इस तरह से मैंने अपना जीवन सजा लिया। जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आप सुनोगे।

तेरी सांसों में से बस जाऊं कि कोई जुदा हमको ना कर पाए। इतना प्यार मत कीजिए यार, इतना प्यार मत कीजिए यार कि हम खुशी के मारे मर जाए। Een hele goede morgen, Satya. Ook van harte welkom bij ons. En wij van Ujala Radio wensen u een hele mooie dag en een aangename luisterstemming toe.

Lutë gëje i gjubin nauti jalsi. O rapluk, WhatsApp kërte e bëhpo dhe një vaqë shukria me herbani këte he, apë sëbiku, apë program me hisali të he. Gëri këtë rëvdekhu të 8 minut baki he, 10 bëqine me, 8 minutën 4. Tin 10 bëqe ke commercial apë sunoge, or uske bad me apë sunoge. Coffee. टाइम स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं साथ कॉफ़ी पीने के लिए. अगर खुदा रुक जाए तो मैं सजदा करूं, अगर खुदा रुक जाए तो मैं सजदा करूं, अगर सनम रुक जाए तो मैं क्या करूं. तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो बताओ मैं क्या करूं.

फिर से बाहों में आज बाहें हैं, फिर से बाहों में आज बाहें हैं, उन निगाहों में आज निगाहें हैं। ठहरो चांद को छिप जाने दो, ठहरो चांद को छिप जाने दो, रात भर राहें अपनी राहें हैं। मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर की आवाज़ों में। Hi, Madhu, een hele goede morgen en welkom bij ons, Madhu vanuit Rotterdam. En dan zie ik hier al een kopje koffie staan. Ja, komt eraan na de commercials van 10 uur. En Romeo Host is aan het luisteren in Amsterdam Zuidoost. Een hele goede morgen. En welkom met You Are's.

Hey, तुम मिलो तो सही. It's coffee time. तो आप लोग ने तैयार रखे अपने कॉफी, चाय, शरबत, जो भी आप पीने वाले हैं. So let's enjoy it together. Cheers. Hi, phone Daulat.

It's not about the coffee. It's about आप और हम, हम और आप. दूरियां सही, फिर भी हम मिलकर. इस पल को मना रहे हैं.

0: सही
1: तुम मिलो तो सही,
0: तुम मिलो
1: थोड़ा गपशप करें,
0: तो
1: मीठी मीठी बातें।
0: It's not about a coffee.
1: एक कप कॉफी या चाय के साथ।
0: It's about

और उजाला रेडियो के ज़रिए हम मिल रहे हैं, साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। आप बता रहे हैं आपके शहर का मौसम कैसा है, मैं बता रही हूँ कि आम्स्टर्डम का मौसम इस वक्त बदली छाई हुई है अभी, तो हो पड़ा तो सोनो खानजीन फनाख।

पास आना तेरा और फिर खिल जाना तेरा, चिर जाना अगर जाना होता है मेरा। जुबिन नौटियाल, याद है ना वो रात के कोहरे में नज़र आता है, वो रात के कोहरे में नज़र आता है, एक दर्द उसकी बातों में नज़र आता है। छिपाए भी जो छुप ना सका, छिपाए भी जो छुप ना सका, वही प्यार उसकी आंखों में नजर आता है। En Roy zegt het is ook bewolkt in Zweden. Same, same here. Het zonnetje probeert door te breken.

0: मैं ये घर सितारों से चुरा लूं रोशनी, फिर भी तेरी कमी को पूरी नहीं करेंगे। चांद से बरके है चांदनी, चांद से बरकर है चांदनी, चांदनी से बरकर है रात, रात से बरकर है जिंदगी, रात से बरकर है जिंदगी, और जिंदगी से बरकर है आप।
1: अकेले अकेले

0: ही यार मेरा अरिजीत सिंह एंड नेहा कक्कड़ से उजाला रेडियो है ये कविता रानी के साथ एक शुभ और मुबारक सुबह आप सभी को पेश है। आप जहां पर भी हो जिस हाँ में हो प्रोग्राम को सुन रहे मेरी आवाज़ को सुन रहे मेरा प्यार भी आपके दिल तक पहुंचे और शायद आप गाड़ी में हो रास्ते पर हो तो रास्ते के हालात पर ज़रूर ध्यान देना और आपका सफ़र सफल हो। You drive safe and remember, WhatsApp मत करना अगर आप तार भी करते हो तो hands free। आजकल इतनी makkelijk voor de mensen, maar dan zal je toch zien dat iemand aan het WhatsApp is tijdens het rijden. Het is zo handsfree gemaakt en via Bluetooth allemaal kan inspreken, voice text, maar Toch zou je zien dat de mensen achter het stuur aan het bezig zijn op hun zo actief bezig zijn op hun telefoon in het verkeer vaker gezien. Tumhare raaton ka main hi to khwab hu. Tumhare raaton ka main hi to khwab hu. Tumhare sawalon ka main hi to jawab hu. Par tumhe kuch pata nahi. Par tumhe to kuch pata nahi. अभी तुम्हें बताना है क्या? अगला गीत आप सुनोगे।
1: सुनो ना संग मरमर
0: वही जानी पहचानी आवाज।

सुनो ना संगे मर मर के ये मीनारे जीत गंगुली ने सांस सजाए हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कौसर मुनीर के कलम से निकले हुए खूबसूरत अल्फाज आपने सुने फ्रॉम द फिल्म योंगिस्तान। जैकी भगनानी एंड नेहा शर्मा ने इस फिल्म में काम की है विथ फारूक शाइक एंड बोमन ईरानी लीड रोल में।

0: ये आपके लिए।
1: थैंक्स
0: मेघा जी, आई एम अ पेंटर।
1: आई नो, आई जस्ट लव पेंटिंग्स।
0: ऐसा है कि मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया को हिंदुस्तान दिखाना चाहता हूँ। दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरती है। मेघा जी,
1: हाँ, कब से?
0: कल से।

0: कुछ ऐसा था आपका मिजाज कि हम अपने होश गवा बैठे। जब आप आए हमारे दरवाजे तो हम अपनी जिंदगी लौटा बैठे।
1: जब आए हमारे दरवाजे तो हमने जिंदगी लौटा बैठे। मोहब्बत है तुमसे, और किसी को अगर मोहब्बत है और दूसरे को पता ही नहीं चला तो ऐसे में होता है क्या? तेरी आंखों के महफिल में मेरा प्यार नाच रही है, और वो भी खुले आम।
2: तेरी धड़कने
1: अब तो मुझे अपना लो,
2: मुझे खोना
1: या कर दो मुझे बदनाम।

मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है। मुझे कैसे ना पता चला कि तू मेरा इंतजार करता है। जबरदस्त, तुम्हारी ये कस्में कब हमको खा जाए, ये सपने कब हमें धोखा दे जाए। ये कस्में कब हमको खा जाए, ये सपने कब हमें धोखा दे जाए। ये हवाएं कब अपना रुख बदल दे, ये खुशियाँ कब हमसे मुंह फेर ले। बस इन्हीं सवालों का जवाब मिल जाए, पर कब।

शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम भी सुन रही है रीता सुतर मीर में, सलीम मर्चेंट सोनू एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ों में इस बार आ रहा है आतिफ असलम आपके लिए।

ओरे पिया तरसे जिया आतिफ असलम की आवाज़ में आपने गीत को सुना। तो कमर्शियल ब्रेक होने वाला है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार, मिलेंगे आपसे।

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Jala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

तुम ही तुम हो मेरी निगाह में। एक बार फिर से आपको बेहद ही प्यार से स्वागत करते हुए उजाला रेडियो के प्रोग्राम में तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। एक शुभ और मुबारक सुबह आपको पेश है। आप जहाँ पर भी हो, जिस हाव में हो, प्रोग्राम को सुन रहे, मेरी आवाज को सुन रहे, मेरा प्यार भी आपके दिल तक पहुंचे। रास्ते पर अगर आप हो तो गाड़ी को संभाल कर चलाना, आपका सफर जरूर से सफल हो।

और अब ने भेजा है किसको किसके लिए, दुनिया में मेरे लिए, दुनिया में तेरे लिए। जिस पर जचता है वो ही पर जाए। Het is woensdag 23 september 2026. Kitne kam din baki hai is saal mein. Ye saal bhi bahut hi raftaar se guzar rahi hai aur bhi guzar jayegi. 10 minute ho gaye hai 11 bajkar studio tijd. 10 minuten over 11. Aatif Aslam.

ओ साथी ओ राही, और इस वक्त प्रोग्राम सुन रही है रवीना है रवीना नहीं लखुई मर्ख, और साथ ही साथ में अंजुली देश से उसफिशाफ अंजुली नाम उस रवीना बॉय के एन अंजनी।

तुझे कितना चाहने लगे हैं हम अरिजीत सिंह एंड स्पेशली फॉर अंजुली गोपाल या नाम शलीफा मामा एम पापा एंड यस यस चाहने लगे हम रवीना बॉय कैन अंजना या अंजनी यार नाम लाइक द सो फेल ऑफ एलकार अंजुली एंड अंजनी तुम इतना खूबसूरत हो कि ये सारा समाना तुम पे फिदा है

रेशमा सुबह से सुन रही प्रोग्राम, रेशमा एंड विनोद चकावरी आप दोनों के लिए, एंड कोशिश ना तुलक। फॉर रीतिका

नजर नजर ढूंढे उसे आएगी एक दिन मेरे सामने, उड़े नारायणन सपना मुखर्जी की आवाजों में आपने गीत को सुना है। सत्यावी प्रोग्राम सुन रही है आज सुबह से इफोन दौलत आप दोनों के लिए पेश है। And ook voor Ria Kalu uit Hartje Amsterdam. Bas aap hamare saad banhe raho. Ja, de zon is al doorgebroken. Mooi weer ook hier in Amsterdam.

प्यार प्यार प्यार प्यार वो दिले आशिकी वो तसव्वुर का आलम उदित नारायणन अलका याग्निक। रीता सूतरमेर में प्रोग्राम सुन रहे हैं चुपके चुपके चोरी चोरी और साथ ही साथ में परिवार बिहारी के लिए जो ब्रेडा में प्रोग्राम सुन रहे हैं

तुमने कभी किसी से प्यार किया है, किसी का एतबार किया है? और अगर किया है तो सही किया है।

पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने गीत को सुना, ओ प्रिया कौन है जो सपनों में आया। स्पेशली मैंने पेश किया अरुण और उनकी बेटी आलिशा कन्हाई के वास्ते। ये लोग प्रोग्राम ब्रेडा में सुन रहे हैं। अवसर हम साइट ओज में भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो हमारा सलाम वहाँ तक पहुँचे, हमारा नमस्कार आप सभी तक पहुँचे। देनहा में लोग लगातार प्रोग्राम को सुन रहे हैं। उजाला रेडियो है ये, कविता रानी के साथ पुराना गीत पेशे पुराने गीतों के शौकीनों के वास्ते। तो आपके लिए सेलेक्ट किए है एक गीत लता जी की आवाज़ में।

मेरा अंग अंग मुस्काया लता जी एंड मुकेश जी से जाने ना नजर पहचाने जिगर। और कितना जल्दी से ये वक्त गुजर गया है, 6 मिनट बाकी है 12 बजने में। दैट हार्ट अलमाउ सो स्नेल। और वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी जल्दी जल्दी गुजर रही है। पद्मा श्री मोहम्मद रफ़ी, एक आखिरी गीत कर जाती हूँ मैं आप सभी के नाम, जो बेहद ही आनंद से, बेहद ही चैन से, बेहद ही आराम से प्रोग्राम को सुने हैं और मज़ा लूटे हैं या लुफ्त उठाए हैं।

तो आपका साथ ना हो तो हम कहाँ साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, कहती है आपसे आपकी रानी। इसी दौरान हम फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। आप अपना ख्याल जरूर रखना। It was fine om weer bij u te zijn. It was my pleasure. Tot de volgende keer. Namaskar, goedavond.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। ज़वाख के रहने वाले परिवार उमेद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 85 साल के आयु में फैफन तख्त ख्यार और बहन मरखरित उमेद का भाई बहनोई वाल्दो उमेद का सार शरीदा रियाज और रहाना के मामा आरी का ममवा ससुर मिखा और काया के नाना होफ दौरप मानन बर्ख द्रीव का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्ट हाउस में हो गई है। रोनाल्ड के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। ज़वाख के रहने वाले परिवार उमेद बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 85 साल के आयु में फैफन तख्त यार औत बहन मरखरित उमेद का भाई बहनोई वाल्दो उमेद का सार शरीदा रियाज और रहाना के मामा आरी का ममवा ससुर मेखा और काया के नाना होफ दौरप मानन बर्ख द्रीव का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण के मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्ट हाउस हॉस्पिटल में हो गई है। रोनाल्ड के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 11:30 बजे मोरखन दोंद्रदख हल्फ त्वालफ किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम कैनमरलंत फिरखीर दवेख 271 हार्लेम में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 46 33 58 02 06 46 33 58 02। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार लक्ष्मण और परिवार उमेद के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार, आप सुनिए अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा और परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील की माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु लिफोफ्रावास्टहाउस वेस्ट में हो गई है और जो कि स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा थी। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार बिंदेसरी सिंह और परिवार मथुरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील के माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु लिफोफ्रावास्टहाउस वेस्ट में हो गई है स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा जो थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एथवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेदांद द्री उर किए जाएंगे क्रीमाटोरियम वेस्खार्ड ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरसोरखिंग परिवार बिंदेसरी सिंह और परिवार मथुरा के दुख में शामिल है।

यू आर उजाला रेडियो, यहाँ सुन रहा हूँ उजाला रेडियो के प्रोग्राम कॉफी चाय मिलाक शो आप सुन रहे हैं. एंड सो मेन दम कम्स आनंद चंद्रिका सिंह हियर इन द स्टूडियो, जिससे हम बात करने वाले हैं आज के न्यूज़ के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में या अंदर शॉर्ट ऑनवेयर पर जो tijdens het programma die programma bananen mee aan jata hè. En dan gaan van links naar rechts. Van alles en nog wat komt dan ter sprake. Ujala's koffie chai middag show. Goedemiddag allemaal.

उजाला रेडियो के हैं, सुनो और उजाला रेडियो के जरिए चलिए हम प्रोग्राम में आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं और वो ये नगमा होना चाहिए। फिल्म का नाम हीरो और गाना का बोल है तू मेरा जानू है। वेल हम बोल सके कि वीरवा बहुत विशाल है गया। सिंस जोंदाग इस वीर गवेल हेरलिक वीर

मेरा जानो है। आओ सोची ला उन दिनों में या इन दिनों में, उन दिनों में या इन दिनों में के बोलत होएगा कि तू हमार हीरो बाटे। फिल्म हीरो का गाना भी आपने सुना है कि तू मेरा जानो है, तू मेरा हीरो है, जीरो नहीं लेकिन हीरो। एंड दिमाग नहीं चला लो।

उजाला रेडियो, यह सुनोल और उजाला रेडियो के जरिए चले हम प्रोग्राम में आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं और वो ये नगमा होना चाहिए फिल्म का नाम हीरो और गाना का बोल है तू मेरा जानू है। वेल हम बोल सके कि वीरवा बहुत विशाल है यार, सिंस जोंदा इस वीर गवेल हेल वीर।

मेरा जानो है। आओ सोचिला उन दिनों में या इन दिनों में, उन दिनों में या इन दिनों में के बोलत हो गया कि तू हमार हीरो बाटे। फिल्म हीरो का गाना भी आपने सुने कि तू मेरा जानो है, तू मेरा हीरो है, जीरो नहीं लेकिन हीरो। एंड दिमाग नहीं

उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया उजाला रेडियो को जहां पर भी आप चाहें आप हमेशा सुन सकते हैं रात और दिन।

और अब तो ये जीना तेरे बिना एक सजा है यार, सजा है तेरे बिना, ये जीना सजा है तेरे बिना। जुनिता गांधी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर।

ऐ जाना जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, नेवर। अब इतना सुंदर गीत के बाद मैं तो कहूंगा कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है और क्या सुनना है।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

यू आर उजाला रेडियो, यहाँ सुन रहा हूँ उजाला रेडियो किसी प्रोग्राम कॉफी चाय मिला शो आप सुन रहे हैं. एंड सो मंडे इन दन कम्स आनंद चंद्रिका सिंह हियर इन द स्टूडियो, जिससे हम बात करने वाले हैं आज के न्यूज़ के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में या अंदर शॉर्ट ऑन द वेब पर जो tijdens het programma die programma banane me aanjata hè. En dan gaan van links naar rechts. Van alles en nog wat komt dan ter sprake. Ujala's koffie, chai, middag, show. Goedemiddag allemaal.

उजाला रेडियो ये हैं सुनोला और उजाला रेडियो के जरिए चलिए हम प्रोग्राम में आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं और वो ये नगमा होना चाहिए फिल्म का नाम हीरो और गाना का बोल है तू मेरा जानू है वेल मोल से किला की वीरवा बहुत विशाल है सिंस जोंदा इज इट वीर गेवेल्डिग हीरलिक वीर

तू मेरा जानो है। आओ सोची ला उन दिनों में या इन दिनों में, उन दिनों में या इन दिनों में के बोलत हो गया कि तू हमार हीरो बाटे। फिल्म हीरो का गाना भी आपने सुने कि तू मेरा जानो है, तू मेरा हीरो है, जीरो नहीं लेकिन हीरो। एंड दिमाग नहीं से डालो।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: उजाल रेडियो के साथ ये गीत यहीं खत्म होता है। आप सुनते रहिए हमेशा रोजाना उजाला रेडियो 24 घंटा लगातार।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।